अरे तो जो पीछे बता रहे मुझे नमो फार्मी नमो बोले नाम तुमने तेज थोड़ा सा लेके है।